एक प्रोफेसर ने क्लास में स्टूडेंट्स के सामने एक कप चाह दा रखिया ते उन्हें पूछा कि जे मैं एक कप एक मिनट ली फड़ा ते की होवेगा। स्टूडेंट्स ने कहा कि कुछ भी नहीं। प्रोफेसर ने पूछा कि जे मैं एक कप एक घंटे ली फड़ा ते स्टूडेंट्स कहिंदे तुहाडी बांह दर्द करन लग पवेगी। फिर प्रोफेसर ने पूछा कि जे मैं एक कप सारा दिन फड़ी रखा ते स्टूडेंट्स कहिंदे तुहाडी बांह नंब हो जाएगी, दर्द बढ़ जाएगा ते तुहानू कप रखना ही पवेगा। प्रोफेसर ने मुस्करा के कहा कप का वेट तो सेम है, फर्क सिर्फ ये है कि मैं उन्हों किन्नी देर वास्ते फड़िया। यही साड़ियाँ वरीज नाल हुंदा, प्रॉब्लम्स का वेट हमेशा बहुत बड़ा नहीं हुंदा, पर असी उन्हों सारा दिन अपने माइंड विच फड़ी रखते हैं, अपने माइंड के उत्ते असी उन्हों हावी करी रखते हैं। एक कॉमेंट, एक आर्गूमेंट, एक बिल, एक मिसटेक असी उन्हों अपना मन अपने मन विच वार वार रिपीट करते रहने। सो अज की कहानी की यह सिख्या कि चिंता आनी नैचुरल आ, पर चिंता नू सारा दिन फड़ी रखना साड़ी चॉइस आ। कई बार पीस लैण लई प्रॉब्लम हल करनी जरूरी नहीं हुंदी, प्रॉब्लम नू कुछ समय लई हेठां रखना भी जरूरी हुंदा है। अज अपने मन नू कहिए कि मैं अपनियां रिस्पोंसिबिलिटीज़ निभावांगा, पर मैं अपनी पीस नहीं गवावांगा कदे भी नहीं।

0: कांग्रेचुलेशंस मिस्टर पुल्लर, तुम्हारी वाइफ दी मेंटल हेल्थ बहुत जल्दी रिकवर कर रही है। ऑल क्रेडिट गोज टू योर लव एंड केयर।
1: बस डॉक्टर साहब, जब मैं उन्हें हंसा लेना ना, मैनू लगता मैं रब खुश कर रहा।

0: Queen FM would like to thank the Community Broadcasting Foundation for their continued support by providing funding that helps this station remain on air. With local content, language programming and various music styles, the CBF assists Win FM to maintain technical quality.
1: हां जी ते वापस आ गए हैं ते आज न्यूज़ ते भी फिर हुन एक नज़र मारी लेने हैं कि सब तो पहला ऑस्ट्रेलिया दी इकोनॉमी अपडेट कर लेने हैं। रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने इस हफ्ते जून मीटिंग विच कैश रेट 4.35% ते होल्ड कीता। ए डिसीजन उन्हां हाउसहोल्ड्स लई बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिन्हां ने होम लोन्स, बिजनेस लोन्स या फिर रेंट प्रेशर ऑलरेडी हाई उन्हां नूं लग रहे ने। रेट होल्ड का मतलब रिलीफ नहीं पर एक पॉज जरूर है। फैमिलीज हुण भी ग्रोसरीज, पेट्रोल, इंश्योरेंस, रेंट ते मॉर्गेज रिपेमेंट्स दे प्रेशर नाल डील कर रही ने। जे इन्फलेशन की गल करिए तो ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने दे मुताबक अप्रैल 2026 तक एनुअल CPI 4.2% सी। हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट ते फूड, नॉन अल्कोहलिक बैवरेजेस इन्फलेशन दे वड्डे कंट्रीब्यूटर्स रहे। इस करके आज दी प्रैक्टिकल जिहड़ी एडवाइस है वो ये है कि बजट नू वीकली रिव्यू करो, सबसक्रिप्शंस चैक करो, अननेसेसरी स्पेंडिंग घटाओ ते जिथे भी पॉसिबल होवे कम्युनिटी सपोर्ट सर्विसेज दी जानकारी जरूर रखो। विक्टोरिया विच एजुकेशन नाल जुड़ी वड्डी अपडेट है कि स्कूल्स विच डिवाइस फ्री लर्निंग दा फोकस बढ़ाया जा रहा है। टर्म पहली जिहड़ी है 2027 तो सैकेंडरी स्कूल्स नू डेली प्लान डिवाइस फ्री लर्निंग टाइम इनकलूड करन लई किया गया। ये पेरेंट्स लई भी रिमाइंडर है कि लर्निंग सिर्फ स्क्रीनस ते नहीं हुंदी, डिस्कशन, हैंड राइटिंग, रीडिंग, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज अते फेस टू फेस कम्युनिकेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन लई एक बारी फिर रिमाइंडर है कि विक्टोरिया दा मल्टीकल्चरल फेस्टिवल एंड इवेंट प्रोग्राम 2026 ते 2027 मल्टीकल्चरल कम्युनिटीज नू कल्चरल इवेंट्स लई सपोर्ट दिंदा है। प्रोग्राम्स विच स्मॉल, मीडियम ते लार्ज फंडिंग स्ट्रीम्स हैं अते ग्रांट्स अप टू 50,000 अवेलेबल ने। जे तुहाडी पंजाबी, सिख, इंडियन या मल्टीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कल्चरल इवेंट्स प्लान कर रही है तो ऑफिशियल गाइडलाइंस चेक करना यूजफुल रहेगा। ते जे हुण पंजाब वल दी गल करिए ते चंडीगढ़ रीजन विच मानसून दी अराइवल डिले होण दी रिपोर्ट है। मानसून ने इंडिया दे कुछ सदरन ते ईस्टर्न पार्ट्स विच एडवांस कीता सी पर हुण इसी स्पीड स्लो हुई है अते चंडीगढ़ विच अराइवल मंथ एंड वल एक्सपेक्टेड दसी जा रही है। पंजाब ते हरियाणा विच फार्मर्स लई एक ए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पैडी सीजन, इरीगेशन प्लानिंग अते इलैक्ट्रिसिटी डिमांड सब वैदर नाल जुड़े हुए हैं। पंजाब विच हालिया स्टॉर्म डैमेज भी दी वड्डी चिंता है। रिपोर्ट्स मुताबक जून 11 ते 12 नू थंडरस्टॉर्म कारण 8,000 तो वध इलैक्ट्रिसिटी पोल्स, हंड्रड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मरस अते ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर नू डैमेज होया जिस नाल लॉसिज लगभग 20 करोड़ तक एस्टीमेट किए गए हैं। ये न्यूज़ जिहड़ी है ओ क्लाइमेट प्रिपेयरनेस की इंपोर्टेंस भी दसदी है। स्टॉर्म्स हुण सिर्फ वैदर इवेंट नहीं रहे, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मिंग अते डेली लाइफ नू भी डायरेक्ट इंपैक्ट करते ने। पंजाब विच ड्रग्स डी एडिक्शन नाल जुड़ी अपडेट भी आई है। हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर बलबीर सिंह ने कहा कि मार्च 2025 तो मे 2026 तक 90,000 तो वध लोगों नू डी एडिक्शन अते OOAT सेंटर्स राही ट्रीटमेंट मिलिया। ये सिर्फ गवर्नमेंट स्टैट्स नहीं हैं सगों फैमिलीज लई मैसेज है कि एडिक्शन शेम नहीं स्टेटमेंट दी अते सपोर्ट दी गल है। पेरेंट्स, टीचर्स अते कम्युनिटी लीडर्स अर्ली साइंस नू समझण लई एम्पथी नाल हैल्प करन। एक होर पंजाब रिलेटेड इशू विच निहंग सिंह अते हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट दे विचकार व्हीकल एंट्री टैक्स नू लैके डिस्प्यूट एस्कलेट होण दी रिपोर्ट है। खालसा टैक्स वाला प्रोटेस्ट सिंबोलिक तौर ते डिस्कस हो रहा है अते जून 21 तो बाद इशू होर वध सकदा है। क्रॉस बॉर्डर ट्रैवलर्स, ट्रांसपोर्टर्स अते टूरिज्म बिजनेस लई ये मैटर इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जे हुण वर्ल्ड दी न्यूज़ की गल करिए तो वर्ल्ड न्यूज़ विच मिडल ईस्ट नाल जुड़ी वड्डी डिवेलपमेंट है। रॉयटर्स के मुताबिक US ईरान पीस फ्रेमवर्क ने मार्केट्स नूं कॉशियस ऑप्टिमिज़म दिता है। प्रपोज्ड अरेंजमेंट्स विच सीज़फायर एक्सटेंशन ईरान ऑयल सेल्स अते स्ट्रेट ऑफ होमस रूट्स नाल जुड़े पॉइंट्स डिस्कस हो रहे हैं, पर डील फाइनल नहीं है अते रिस्क हाले भी मौजूद हैं। यह इशू ऑस्ट्रेलिया तक भी इंपैक्ट कर सकता है क्योंकि ऑयल प्राइसिस अते शिपिंग रूट्स का इफेक्ट पेट्रोल अते ट्रांसपोर्ट कॉस्ट से पै सकता है। स्पोर्ट्स लवर लई फीफा वर्ल्ड कप 2026 चल रहा है। अज के फिक्सचर्स विच इंग्लैंड वर्सिज क्रोशिया वर्गा मैच हाईलाइट है, नाल ही गाना वर्सिज पनामा, ओबिकस्तान वर्सिज कोलंबिया अते सिचिया वर्सिज साउथ अफ्रीका मैच लिस्टिड हैं। फुटबॉल फीवर हुण मेलबर्न दिया मल्टीकल्चरल कम्यूनिटीज विच भी वधेगा। कई फैमिलीज लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग मैच टाइमिंग्स फॉलो कर रही होणगियां। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2026 वर्ल्ड कप विच एक होर रिकॉर्ड बनाया। 31 साल अते 132 दिन की एज दे वर्ल्ड कप मैच स्टार्ट करने वाले ओल्डेस्ट आउटफील्ड प्लेयर दसे गए हैं। यह सिर्फ स्पोर्ट्स रिकॉर्ड नहीं सगों डिसिप्लिन फिटनेस अते कंसिस्टेंसी की एग्जाम्पल भी है। सो ये सन अज दियां कुछ खास खबरां ते जिहड़ा असीं अज दा मेन टॉपिक सांझा कीता सीगा टेक्नोलॉजी दे रिलेटेड। सानू मैसेज आया है कि साडे घर दे विच टेक्नोलॉजी दे नाल रिलेटेड हमेशा गल हुंदी आ, बट असर जिहड़ा आ उह किसी दे उत्ते नहीं हुंदा। तुसीं इहदे बारे की सोचदे हो? टेक्नोलॉजी तुहाडे घर विच किस तरह वरती जांदी आ? सानू जरूर मैसेज करो, वट्सएप दे उपर मैसेज कर सकदे हो 0434233971।

0: क्वेश्चन मेरे लिए, तो सही है अपनी जगह
1: इंप्रेस कर रहे
0: तू हो कितने रही है?
1: तरीका तो सही लग गया
0: की पता कम तो आया नहीं।